तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे, आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. Radio Olive, on the number one.

0: favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: दुनिया फिरंग जापा है, फिक्र हिगम का पापा है, अपना तमस ये जापा है, फिक्र करे फिक्र

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।